सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज शनिवार है। शक संवत 1947 के वैशाख मास की तिथि 26, तदनुसार 16 मई वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए।

कर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय

0: वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं और अब समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई।
3: रात लगातार ले सकते हैं और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। ये है विविध भारती वंदनवार।

चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये था चिंतन, अब भक्ति संगीत।

संस्कृति से बोल रहे हैं झरोखा। सुनिए आज दिनभर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 7 बजे बोले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे हम ही राही प्यार के। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है ऐसी लागी लगन, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने बने गायक अनूप जलोटा। आज 5वीं कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विकी कौशल पर। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 पर होगा और रात 9:30 पर। दिन में 1 बजे सुहाना सफर कार्यक्रम सुनिएगा, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनिएगा। 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक शकुंतला। 4 के अंतर्गत आज शाम 4 बजे जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। सुबह 8:15 पर और दिन में 2:15 पर, दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय से निकालकर प्रस्तुत की जा रही है।

शाम 7 बजे ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी पत्नी का पत्र के वाचन का दूसरा भाग।

0: बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम,
0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मेरे पास जाने कितने जान नौकरी, इस परिंदे में जान नौकरी, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने की

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक।

0: की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। आठ कवल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण देनी चदरिया, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। निर्गुण भक्ति धारा के अप्रतिम कवि संत कबीर ने समाज की विडंबनाओं को उजागर किया और एक जीवन दर्शन दिया। ऐसी लागे लगन भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर हम श्री अनूप जलोटा जी

0: का स्वागत कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आज की इस कड़ी में अनूप जी, कबीर की रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। बताइए, किस रचना, या यूं कहें कि जो हमें पसंद है, आज उसकी चर्चा करें। चदरिया झीनी रे झीनी।
1: चदरिया झीनी रे झीनी मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत लोकप्रिय किया। उसके बाद मैं भी चल पड़ा इस भजन को लेके आगे। ये भजन यूं तो राग देश पर आधारित है, लेकिन इसमें एक रागमाला प्रस्तुत की जाती है, और रागमाला प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में जो लोग शास्त्रीय संगीत के शौकीन नहीं थे, वो इस ओर आकर्षित हो गए और शास्त्रीय संगीत सुनने लगे। क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दर्शन हम रागों के कराते हैं, उससे उनका जी नहीं भरता और वो कहते हैं इसको और गाइए। इस तरह से शास्त्रीय संगीत की ओर लोग आकर्षित हुए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

0: वाह, बहुत सुंदर। बहुत बार सुना है ये भजन, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना और इतनी बारीकियां पता चली, कई रागों की छटा देखने को मिली। आप अनूप जी हमें बताइए, हमारे तमाम श्रोताओं को, कि ये जो रागों का खेल करते हैं, कई रागों का मिश्रण करते हैं, उसके बावजूद सरलीकरण करके लोगों तक पहुँचाते हैं भजन, ये जादू कैसे करते हैं?
1: वैसे भी राग सरल चीज है, राग कठिन चीज नहीं है। राग का मतलब है कि किसी चीज को सुंदर बनाना। तो जब स्वरों को एक सुंदर रचना दी जाए, एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो एक राग बन जाती है। यही लोगों को डरा दिया गया है कि ये क्लासिकल मुश्किल चीज है। क्लासिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन हो, तो इसका आनंद दुगना हो जाता है।

0: आपको अगर थोड़ा सा रागों का पता लग जाए तो उसी गाने को जो आप पहले से सुन रहे हैं उस गाने को आप ज्यादा इंजॉय करने लगेंगे अगर आपको पता लग जाए कि किस राग में है। इसलिए शास्त्रीय संगीत की ओर आपका झुकना, आपका आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, तभी आप संगीत में और आनंद ले सकेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए, हमारे श्रोताओं का भी बहुत लाभ हो रहा होगा। और वैसे भी संगीत सरिता एक पाठ की तरह है श्रोताओं के लिए, कलम और कागज लेकर बैठते हैं, नोट करते हैं, और हम भी कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब समय आ गया है इस कड़ी को समेटने का। ऐसी लागी लगन, भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जानी मानी गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

0: हम विविध भारती से बोल रही हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए भूले बिसरे गीत।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: ये सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम यूनुस खान है।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये दस्की है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ।
0: क्या आप इन आवाजों को पहचान गए?

बुली बिसरे गीत कार्यक्रम की ये पहली पेशकश थी। केदार शर्मा के बोल थे, रोशन की तर्ज और ये आवाज गीता रॉय और मुकेश की थी। बावरे नैन फिल्म सन 1950 में आई थी, जिसका गीत इस वक्त हमने आपको सुनवाया। बुले बिसरे गीत कार्यक्रम में कुछ ऐसे गाने जो गुजरे दौर के गाने हैं और चमकते हुए सितारे हैं, पर उनकी चमक शायद आज के इस फॉरवर्ड जमाने में थोड़ी धुंधली पड़ गई है। फिल्म का नाम है रंगोली।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम चल रहा है और सुबह के 7:11:40 हो चुके हैं और ये गाना गूंज रहा है। ये मासूम सी आवाज अमित गांगुली की, फिल्म का नाम दूर कराही, गीत ए इरशाद, संगीत किशोर कुमार।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, और अब हम एक गीत सुनवा रहे हैं जो आपको एक दूसरे गीत की याद दिलाएगा। बनारसी ठग फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रेम धवन के बोल, संगीत इकबाल कुरैशी का है। दिलचस्प बात यह है कि ये धुन किसी और ही गाने की याद भी दिलाती है।

बनारसी ढक फिल्म का ये गाना किसी और ही गाने की याद दिलाता है और इसे हम एक पहेली की तरह ही छोड़ देते हैं। आपको जरूर वो गाना याद आ गया होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशोर कुमार की आवाज अब गूंज रही है। फिल्म का नाम मुनीम।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामू और उज्जवल बनाए। वीको टर्मल क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के।

ये रास्ते ही प्यार की फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत रवि का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में संजोग फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का है।

0: कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

सेल्स लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इसी के साथ अब आज का हम ही रही प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।

0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी

0: वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1950

0: देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की

0: तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का। इस कार्यक्रम के लिए आइए आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है, बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद

ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा की निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियां धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर

बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आइए सुनिए चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम का आगाज करते हुए आज हम जाने माने निर्देशक धर्मेश दर्शन को दे रहे हैं जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। अगर आपको याद हो तो धर्मेश दर्शन ने अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म लुटेरे के जरिए किया था। ये साल 1993 की बात है। इस फिल्म में सनी देओल और जूही चावला थे, लेकिन उन्हें जो नाम मिला वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म के जरिए मिला। ये फिल्म सन 1996 में आई थी और इस फिल्म का तो संगीत भी बहुत ज्यादा चला था। तो धर्मेश दर्शन के कुछ गाने सुनते हैं आज के चित्रलोक कार्यक्रम में शुरुआत में। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी और साथियों की आवाजें हैं। सभी को याद होगा कि जब जब फूल खिले जैसी फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने राजा हिंदुस्तानी बनाई थी और आमिर खान इस फिल्म में थे। साथ में थी करिश्मा कपूर,

0: पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
3: वो मुझे कुछ काम है।
2: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
3: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
2: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
3: क्या नहीं जानता?
2: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
3: सच में?
2: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
4: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: विशेष कार्यक्रम भारत की गूंज। एक बेमिसाल शायर,
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने कितने उड़ान बाकी, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

ताजी फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस फिल्म में विकी कौशल ने सैम मानिक शॉ की नहीं, इस फिल्म में विकी कौशल ने एक जासूस की भूमिका निभाई थी और आगे सैम मानिक शॉ की भूमिका उन्होंने निभाई। सैम बहादुर फिल्म में इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
6: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खड़े हो इमीडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लो जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और ये है चित्रलोक का अगला गाना।

0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें

और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती।

0: बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हुए हैं। आज का अखबार कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
3: वो मुझे कुछ काम है।
2: अरे रुको, तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
3: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
2: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
3: क्या नहीं जानता?
2: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
3: सच में?
2: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
4: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: और प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
5: आज का अखबार।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप जहां भी हों खुश हों, स्वस्थ हों और हमसे जुड़े हों। और आज हमारे और आपके जुड़ाव का दिन है। जी हाँ, आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष और इसी उपलक्ष में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ भी हो गया शामिल और आज सुखना लेक पर एक वॉकाथोन का आयोजन किया गया। इसका प्रारंभ फ्लैग दिखाकर उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने किया। इस अवसर पर निदेशक अभियांत्रिकी विकास भट्ट, कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह, समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा और सहायक निदेशक मीनाक्षी कालिया और अन्य अधिकारीगण आकाशवाणी चंडीगढ़, दूरदर्शन, PIB, CCW के अधिकारी, कर्मचारियों सहित उनके परिवारजनों के साथ 200 से अधिक लोगों ने इस वॉकाथॉन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर हमारे बहुत पुराने और नियमित श्रोता गुरदीप सिंह ढिल्लो से हमने बातचीत की। आइए सुनते हैं उस बातचीत के कुछ अंश।
6: गुरदीप सिंह ढिल्लो, चंडीगढ़ चली ना, इतनी सेटल बच्चे नु पढ़ाउन लई आए सी, बच्चे बाहर चले गए सी, हम दो इतनी है, मैं डेली इतनी सैर करना वा, ते बड़ा चंगा लगा अज। मैं रस्ते दे विच जिन्ने तुहाडे ओ आ रहीआं सी टीमां सैर कर रही सी, उन्हें रोक रोक के अपना मन खुश कर रहा सी।
7: अच्छा जी।
6: भी मैं वो प्रोग्राम सुनता हुंदा सी, तो भुलदी नहीं, बचपन दी यादां नहीं ना भुलदियां सी उस टाइम, तो असीं सुन के हैरान हुंदे सी किस तरह ये मशीन छोटी जी बोल रही है। तो इन्ने प्रोग्राम वो आ रहे सी जिन्ने साडे पड़ोस च बैठे हुंदे आ, तो भाई ठंडू राम ते दूजे जिहड़े सी पिछले पता की ते चार पंज जने सी, वो साडे कैरो हुंदे सी, उदों चीफ मिनिस्टर सी, मैं उदों प्राइमरी च जां छेवीं सत्तवीं पढ़दा होगा, वो आए सी उत्थे। फिर उन्होंने लाइव प्रोग्राम जोगिंदर आकाशवाणी वाले जिहड़े आ वो लाइव आए हुए सी स्टेज ते, लोग हैरान सी भी दिसो बोलते हैं इतने हेडिंग आते हैं इन्होंने, उही प्रोग्राम साढ़े सामने हो रहा है। थोड़ा चंगा एंटरटेनमेंट का सोर्स, जानकारी खेतीबाड़ी बारे सलाह, लीक बारे सलाह, सारी थानू साढ़े सोशल लाइफ के बहुत चंगी गल् दसते जिम्मे परिवार के गल् करते आकाशवाणी तो इस तरह प्रोग्राम आता कि साढ़े परिवार वाले बैठे आ, तो बड़ा नहीं भुलते बिल्कुल, TV भुल जाते हैं, TV तो कोई इन्ना नहीं आता जिन्ना वो प्रोग्राम साढ़ा अपना लगता सा अपना भाईचारा या सू कोई मत देने वाला नकल देने वाला कोई है सू गाइड कर रहा जरा, वो नहीं भुलते हैं। वो लड़ाई की जानकारी, वो इन्नी बुजुर्ग भी उत्थे कट्ठे होते रेडियो ना रखे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार, और कार्यक्रम में अब आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। राष्ट्रीय समाचारों में पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े। नीट UGC परीक्षा की नई तिथि 21 जून, प्रवेश पत्र 14 जून से, परीक्षा अगले वर्ष से होगी ऑनलाइन। भारत में UAE 47,500 करोड़ का करेगा निवेश, प्रधानमंत्री मोदी की UAE यात्रा के दौरान तेल व गैस पर हुए नए समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की आशंका को किया खारिज। आरजी कर मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर समेत 3 IPS अफसर निलंबित। मॉनसून की 26 मई को केरल पहुंचने की संभावना, सुपर अल नीनो की आशंका बढ़ी। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। ट्रंप ने कहा ईरान 20 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम रोक दे तो अभी खत्म हो जाएगा युद्ध। सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाएंगे भारत और चीन, हुई द्विपक्षीय वार्ता। और बोलिविया में प्रदर्शनकारियों ने घेरा राष्ट्रपति का महल, डायनामाइट चलाए। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार, और चलिए अब चलते हैं गीतों के सफर पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आज का अखबार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से, और इस कार्यक्रम का आनंद आप

रेडियो सेट के साथ साथ अपने फोन पर न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड कर भी ले सकते हैं। कार्यक्रम में अब बारी आ गई है लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। चंडीगढ़ के पहले फ्लाईओवर के लिए पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की रोक, फैसला आने तक नहीं कटेगा एक भी पेड़। 50 साल पुराने आम के पेड़ों की सुरक्षा के दिए गए आदेश। एसआईआर से पहले आज और कल यानी 16 और 17 मई को स्पेशल कैंप में होगा वेरिफिकेशन। 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगे।

0: चंडीगढ़ के बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर संस्कारों से जोड़ेगा इस्कॉन। 1 जून से लगेगा समर कैंप। सेक्टर 36 हरे कृष्ण धाम में 13 जून तक लगेगा ये कैंप। पंचकूला में मिट्टी से मंडल कुश्ती प्रतियोगिता में पंचकूला अंबाला के 75 पहलवानों ने दिखाई ताकत। अब 17 मई को हिसार में होगा मुकाबला। और अब बारीक क्षेत्रीय समाचारों की। कॉल सेंटर की आड़ में चंडीगढ़ से विदेश तक फैला था साइबर ठगी का जाल। 132 लोगों को दबोचा। 1.07 करोड़ बरामद। शहीदी दिवस पर 22 साल बाद पाकिस्तान जाएगा एसपीजी का जत्था। 11 जून को वाघा मार्ग से होंगे रवाना। हलवारा एयरपोर्ट पर उतरी पहली उड़ान। पंजाब को मिला नया हवाई द्वार। हरियाणा में वीटा ने दूध के दाम 2 रुपए और देसी घी के 10 रुपए बढ़ाए। हरियाणा में डेंगू के मामलों में कमी। 4 साल में 78% गिरावट दर्ज की गई। और हरियाणा में मंत्री अफसरों का तेल का खर्च आधा करने की तैयारी में सरकार। वीवीआईपी के वाहन काफिले में भी कटौती संभावित। तो ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस। आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
0: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
0: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है। देश दुनिया और स्थानीय खबरों के बाद अब चलिए आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। चलते हैं एक और गीत की ओर।
2: Yo yo yo yo, got a nozzle.

और श्रोताओं अब बात करते हैं उन होनहार किशोरों की जिन्होंने जीता है अवार्ड और देश का नाम किया है रोशन। देश के 3 किशोर छात्रों ने इमली के बीज से ऐसा पाउडर बनाया है जो पानी के माइक्रोप्लास्टिक हटाने में मदद करता है। इस खोज के लिए उन्हें द अर्थ पुरस्कार 2026 का एशिया का विजेता चुना गया है। 16 वर्षीय विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता का प्लास स्टिक नामक प्राकृतिक पाउडर पानी में मौजूद छोटे छोटे प्लास्टिक कणों को आपस में चिपका देता है और फिर बड़े गुच्छों में तब्दील कर देता है, जिन्हें मैग्नेट की सहायता से हटाया जा सकता है। इस तकनीक को विकसित करने के लिए टीम को $1,00,000 यानी कि 96 लाख रुपए मिलेंगे। और छात्रों को यह आइडिया आया था ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान। तो भाई अपने दिमाग की बत्ती हमेशा जलाकर रखिए, अपनी आंखों को खुला रखिए, आपको कहीं से भी कुछ भी आइडिया मिल सकता है। और बहुत बहुत बधाई हमारे इन 3 किशोरों को जिन्होंने देश के लिए ये गौरव हासिल किया है और इनको ये पुरस्कार दिया गया है।

0: और श्रोताओं, अब इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम समय समाप्ति की ओर है कार्यक्रम का। अब मैं शालिनी इसी दुआ के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप सभी रहें हैप्पी हैप्पी, आपसे लेती हूँ कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने को है। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

0: राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर रिजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। सफर सुरीला सा ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
1: सफर सुरीला सा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं शालिनी। शुरुआत कर रही हैं चलते चलते फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने। आदेश श्रीवास्तव का संगीत, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

सफर सुरीला सा कार्यक्रम में ये पेशकश थी बाजीराव मस्तानी फिल्म से। संगीत संजय लीला भंसाली का, गीत लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने और ये आवाजें थी श्रेया घोषाल और वैशाली माडा की। अब वक्त है एक ब्रेक का।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत उत्तम सिंह द्वारा निर्देशित लता मंगेशकर उदित नारायण के युगल स्वरों में दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार, अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर।

0: समीर का लिखा गीत था, संगीत था हिमेश रेशमिया का, दिल मांगे मोर फिल्म का ये गीत था और आवाजें के और सुनिधि चौहान की। और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सोनू निगम की आवाज में, फिल्म का नाम है चॉकलेट।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, अब समय हो गया है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पॉप टाइम का। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो मैं छिपा जी।
0: हेलो पिंके, आज अकेले ही?
1: और क्या, मैं पखारियों की फौज लेकर आता टी टी टी करके।
0: पिंके, मेरे कहने का मतलब था?
1: सब जानता हूँ, आपका मतलब मेरे मतलब ही पाजी।
0: ओहो पिंके, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो।
1: देखा पाजी, माफी की भीख मांगनी शुरू कर दी ना भिखारियों के स्टाइल में। ए बाबा, ए बाबा, भगवान के नाम पर मुझे माफ कर दे बाबा।
0: पिंके सुधर जाओ।
1: नहीं सुधरना, कर लो जो करना टी टी टी करके।

0: पिंके तुम भी बात का भतंगड़ बना देते हो।
1: और क्या बाजी, मैं बैंगन का भरता बनाऊं टीटी टी करके।
0: पिंके मेरे कहने का मतलब था कि आज शन्नो जी नहीं आई।
1: बाजी आई होती तो मेरे साथ ही होती ना टीटी टी करके।
0: पिंके कहीं गई है शन्नो जी?
1: हाँ जी बाजी, उनकी मासी तन्नो के लड़के खच्चू की शादी है टीटी टी करके।
0: पिंके नाम बड़े जबरदस्त हैं, मासी धन्नो और उनका लड़का खच्चू।
1: पाजी आपको पसंद है?
0: हाँ हाँ।
1: तो आप रख लो ना अपना नाम खच्चू पाजी टीटी टी करके।

0: पिंके, तुम हर बात घुमा फिराकर मेरे ऊपर क्यों छोड़ देते हो?
1: लो कर लो बात। पाजी, आप कौन सा चंडीगढ़ का लेबर चौक है जो हर बात घुमा फिरा के मैं आप पर छोड़ दूंगा टीडी टी करके?
0: पिंके, मासी धन्नो के लड़के खच्चू की शादी है, तुम नहीं गए?
1: नहीं भाई, शन्नो जी ने मना किया है।
0: शन्नो जी ने मना किया है, पर क्यों?
1: भाई, शन्नो जी नाराज है मुझसे।
0: अच्छा, पर क्यों?
1: भाजी, ओ शन्नो जी का नीला दांत खराब हो गया है ना, मेरी वजह से टीडी टी करके।
0: नीला दांत? मैं कुछ समझा नहीं पिंके।
1: ओहो भाजी, एक तो हर छोटी मोटी बात आपको समझानी पड़ती है टीडी टी करके। भाजी, वही नीला दांत।
0: ओहो पिंके, तुम ब्लूटूथ की बात कर रहे हो?
1: हाँ जी भाजी, ब्लूटूथ यानी नीला दांत। शन्नो जी क्या कर गई है, जब तक मेरे मोबाइल का नीला दांत ठीक ना करवाया, खबरदार तन्नो मासी के घर आए या ब्याह की मिठाई का एक दाना भी खाया टीडी टी करके।
0: ओहो बेचारा पिंका, फिर तुमने ठीक करवाया मोबाइल का नीला दांत, मेरा मतलब है ब्लूटूथ।
1: भाजी, रोटियां बनाने से टाइम मिले तो ठीक करवाऊ ना। जब से शन्नो जी मुझे अकेला छोड़कर गई है, कभी बर्तन भांडे मांज, कभी मूंगी की दाल बना, कभी रोटियां बना, ओए होए पाजी, मेरी तो बस हो गई है टीडी टी करके।
0: पिंके, आप पता चला ना, शन्नो जी के बगैर तुम बिल्कुल अधूरे हो।
1: पाजी, आप कौन सा परजाई के बगैर पूरे हो टीडी टी करके?
0: पिंके, तुम नहीं सुधरोगे।
1: पाजी, अब मुझे बाद में सुधारना, पहले सुनाओ एक गाना, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: पिंके, आज तुम्हारा दोस्त सोहन नहीं आया।
1: बे अच्छी पाजी, पिंके
2: लो, जैसे शैतान को याद किया शैतान हाजर, ऐसे ही जकाम को याद किया जकाम हाजर, टीड़ी टी करके। ओए सोने, खुला ही है दरवाजा मेछी मैल का, आ जा अंदर निछ मार के।
3: दबस्ते बेची पाजी, हेलो पिक्के। एक तो इस जकाब ने मुझे कहीं कारी छोड़ा,
2: पर भगवान ने तुझे हम पर जरूर छोड़ा, टीड़ी टी करके।
0: पिंके, क्यों सता रहे हो सोहन को? बेचारा अभी आया है और तुम हो गए शुरू।
3: बेची पाजी, एक तो इस जकाब ने मेरा दास ही बार दिया है। ओ यार पिक्के, आज सदो भाभी दिखाई नहीं दे रही।
2: ये ले 3D गागले, मेरा मतलब है 3D एनके लगा के देख ले। सोहन, जकाम के गोल्डन मरीज वो शन्नो जी है, कोई 3D फिल्म नहीं, जो तुझे एनकों के बगैर दिखाई नहीं दे रही टीड़ी टी करके। ओए जब शन्नो जी आई नहीं तो दिखाई क्या देंगी?
0: सोहन, शन्नो जी अपनी मासी धन्नो के लड़के खच्चू की शादी में गई हैं।
3: अच्छा, व्याह खड़े गई है सद्दो भाभी। ओ यार पिक, तू नहीं गया?
2: ओए सोन, अगर मैं गया होता तो आज मैं तेरे सामने ना बैठा होता टीड़ी टी करके। जकाम का गोल्डन मरीज।
3: अच्छा अच्छा, सद्दो भाभी पिक्के को घर की चौकीदारी के लिए छोड़ गई है। है ना, जागते रहो।
2: ना मैं चौकीदार हूँ, जागते रहो। ओए सोन, अपने जुकाम का इलाज करवा ले टीड़ी टी करके।
0: सोहन, पिंके से नाराज हैं शन्नो जी।
3: अच्छा बेची पाजी, सद्दो भाभी नाराज है पिंके से?
0: हाँ सोहन, पिंके ने शन्नो जी के मोबाइल का ब्लूटूथ जो खराब कर दिया।
3: बेची पाजी, एक तो इस जकाब ने मेरा दास ही बार दिया है। पाजी, मुझे जिस चीज की समझ नहीं हो रहा मैं उसे कभी हाथ नहीं लगाता, जैसे पिक्के ने मोबाइल का डीला दांत खराब कर दिया। वैसे पिक्के, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, भाई बना ले शन्नो भाभी को, नहीं तो बहुत पछताएगा।
2: ओए सोन, जकाम के गोल्डन मरीज, शन्नो जी को मैं मनाऊं या ना मनाऊं, तू ऐसे ही खेत की जकाम वाली चिड़िया बनके उड़ारियां मार रही है टीड़ी टी करके।

0: बेची पाजी, कल तो सारी रात बस सो नहीं सका।
1: अच्छा सोहन, क्या हुआ?
2: पाजी, जकाम है। और क्या होना है? सोहन जकाम को टीड़ी टी करके।
0: और दे यार पीके, मैं यही सोचता रहा कि ये जिंदगी चार दिन है।
1: हाँ सोहन, कहने को तो यही कहते हैं कि ये जिंदगी चार दिन की है।
2: पाजी, ये जिंदगी चार दिन की है, पर सोहन इसलिए परेशान होगा कि जिंदगी तो चार दिन की है और मोबाइल में पैग इसने 30 दिन का डलवा दिया टीड़ी टी करके।
0: ओ दही यार पीके, एक तो इस जकाब ने मेरा दासी बार दिया है। इस चार दिन की जिंदगी में आदमी को पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है।
1: हाँ सोहन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि हर इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है।
2: पाजी, पर अपना ये सोन जुकाम, ओए होए होए, पढ़ाई में तो MM DBF है TDT करके।
1: MM DBF, ये कौन सी डिग्री है?
2: MM DBF यानी मैट्रिक में 2 बार फेल TDT करके।
0: बेची पाजी, ओए हो, एक तो इस जकाब ने मेरा दास ही मार दिया है। बेची पाजी, मेरा साला कह रहा था जीजे कल ही बेरा तुझे मैट्रिक फेल से अबे पास बढ़वा दूंगा, पर थोड़े पाहे लगेंगे।
2: ओए सोन, कहीं तेरा साला MA की नकली डिग्री ना दिलवा दे, फिर पुलिस पाजी का कटापा और अखबार में तेरी सर पर हाथ रखे जमीन पर बैठे बैठे की फोटो छपी होगी टीडी टी करके। एक तो तू जुकाम का मरीज, ऊपर से पुलिस पाजी की मार, तू सह नहीं पाएगा टीडी टी करके। एक तो तू जुकाम का मरीज और ऊपर से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तू जुकाम का मरीज बना देगा टीडी टी करके।
1: सोहन, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो नकली डिग्री बेचने का गलत काम कर रहे हैं।
2: पाजी, अभी परसों ही पुलिस पाजी ने पकड़े हैं ये नकली डिग्रियां बेचने वाले, समाज के

0: दुश्मन टीरी टी करके।
1: पिंके, इन लोगों को शर्म नहीं आती?
0: नहीं पाजी, इनको तो नोट आते हैं नोट। पाजी, डिग्रियां तो ऐसे बेचते हैं जैसे मल्ले में सब्जी बेचने वाला आया हो। बीए ले, बीकॉम ले, बीएससी ले, एमएल एमकॉम ले, एमएससी ले। और पाजी, जब ये पकड़े जाते हैं तो पुलिस पाजी कहते हैं तो सुन ले, थप्पड़ ले।
1: सोहन, ऐसे नकली डिग्री बेचने वालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना।
2: बच्ची पाजी, एक तो इस जगह आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बच्ची पाजी, आप लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने साले को भी समझाऊंगा। ओए, नकली डिग्री के चक्कर में ना पड़, पढ़ाई कर, चंगी तरह पढ़।
0: ओए सोहन, तू ये रुमाल फाड़, क्योंकि जुकाम ने तेरा नाश मार दिया है टीड़ी टी करके। चलवा।

0: मेथी भाजी अब मैं जाऊं, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है टीरी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर, मेथी भाजी मैं भी जाऊं। हाँ हाँ सोहन तुम भी जाओ।
0: अच्छा भाजी चंगा भाई सोहन जकाम के गोल्डन मरीज ओके बाय।
1: नमस्ते मेथी भाजी, बाय पिंके, बाय सोहन, बाय पिंके। श्रोताओ आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 11 बजे हैं और आज दिन है शनिवार का और हम जानते हैं कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम का, जो है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है इंस्टा फेस। और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके द्वारा पसंद किए गीत, जिन्हें आप भेज देते हैं हमारे इंस्टा पेज पर। AIR चंडीगढ़ के नाम से हमारा पेज है, वहां पर आप भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं। और ऑलरेडी बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं हमारे पेज पर और अपनी फरमाइशों का सिलसिला उन्होंने कर दिया है शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन गीतों का सिलसिला, जिसमें सबसे पहली फरमाइश हमें आज भेजी है श्री आनंदपुर साहिब से पवन कनौजिया और वंदना कनौजिया ने। आपने फरमाइश की है धर्मवीर फिल्म के इस गीत की। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम के गीतों का सिलसिला मोहम्मद रफी की आवाज़ से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश सेक्टर 21 पंचकुला से मोहम्मद अनस और मोहम्मद अरहान की फरमाइश पर है। आपने सुनना चाहा है संघर्ष फिल्म का ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

आप आनंद ले रहे हैं अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, और ये कार्यक्रम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में अगला गीत गाइड फिल्म से सुनने की फरमाइश में भेजी है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आज हमें फरमाइश आई है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी की भी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

जुर्माना। इस फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश आज हमें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

और आइए अब सुनते हैं दो रास्ते फिल्म का गीत। सुनने की फरमाइश आई है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की।

हनुमानगढ़ से हमें मैसेज मिला है सुल्तान सिंह तरार, कपिल देव तरार और हिमानी जाखड़ का भी। और साथ ही हमें मैसेज आया है कालाम नाहन हिमाचल प्रदेश से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम का भी, और साथ ही इमरान खान और इरफान खान भी हैं।

श्रोताओं, हमें लगातार आपकी फरमाइशें मिल रही हैं और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप हमें अपनी फरमाइश भेजते हैं, प्रयास कीजिए कि आप हिंदी में लिखकर भेजिए। हमारे लिए आसान हो जाता है आपकी फरमाइश को शामिल करना, और थोड़ा सा गैप देकर अगर लिखेंगे और कहाँ से आप लिख रहे हैं, फिल्म का नाम साथ में लिखकर भेजेंगे, तो सहूलियत हो जाएगी। और चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबेरॉय की। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर अगला गीत तेजा फिल्म से।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। डिंपल कश्यप बराड़ा हैं हमारे श्रोता, जिनकी फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं फूल और कांटे फिल्म का अगला गीत। कुमार सानू, अलका याग्निक के युगल स्वरों में एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब बारी आ गई है बॉर्डर फिल्म के इस गीत को सुनने की, जिसके लिए हमें फरमाइश आ जाई है सेक्टर 20D चंडीगढ़ से। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं विशाल कुमार और विकास कुमार। साथ ही आज हमें मैसेज मिला है और इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हम शामिल करें, सप्रेम नमस्ते।

को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा का आज ये मैसेज हमें मिला है। और साथ ही साथ हमें मैसेज आ जाया है, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। इन्होंने लिखा है माय रेडियो माय लाइफ। दिल से धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। तो आइए चलते हैं अगले गीत की ओर, और ये गीत बॉर्डर फिल्म से।

श्रोताओ, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं साजन फिल्म का गीत, जिसकी फरमाइश हमें आई है पंचकुला सेक्टर 9 से। और सुनने के लिए जिन्होंने फरमाइश भेजी है वो है आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे और भविक ढींगरा। और साथ ही साथ परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से भी आज हमें मैसेज कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अपनी फरमाइश का कोई भी गीत इनके लिए हम पेश कर दें, तो इसी गीत में हम

इनका नाम ले ले हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद कादिर की भी आज फरमाइश आई है, सेक्टर 25 पंचकुला से साथी हैं इनके, साथी जाहिद, शाजिद, आतिफ और अजलान बाबू। और कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, आपने भी आज हमें गीत सुनने के लिए मैसेज भेजा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने नाम हम शामिल कर सकें वो हम कर लें। सेक्टर 23 से विकी, रेनू, बुलबुल और अक्षी, आप सभी ने भी आज हमें मैसेज किया, उसके लिए धन्यवाद। और सभी को, आप सबको भी गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत साजन फिल्म से।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, इन लोगों ने भी आज हमें मैसेज भेजा है और साथ ही साथ साजन फिल्म का एक गीत था। तो एक और श्रोता है जिन्होंने साजन फिल्म का ही गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी, हालांकि इन्होंने गीत का नाम नहीं लिखा है। आप हैं पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी और बक्सर से राज एस डी अंसारी, आपने भी साजन फिल्म का ही गीत सुनना चाहा था। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं दुश्मन फिल्म का गीत, जिसके लिए आज हमें फरमाइश आई है अनामिका की, जो कि बुखरी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हमारी श्रोता हैं।

और श्रोताओं, फिलहाल वक्त बचा है सिर्फ ही एक ही गीत के लिए, तो ये गीत सुनवा रहे हैं आपको सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की फरमाइश पर शर्मीली फिल्म का गीत आपने सुनना चाहा है।

0: तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपने अपने गीतों का आनंद लिया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम में। अब शारिणी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को है। अब हम समाचार अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

या विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए ₹50 करोड़ का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹30 करोड़ तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन अर्गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम आपके लिए श्रोताओं अपने विविध भारती के मूल केंद्र से रिले करेंगे।

इरादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत पर किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

हमी का जान नहीं हमरा प्रेम पहला।

0: शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म को ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बताओ

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल को किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चयन से इन चीजों को संवारने और सहकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान भरी, इस परिंदे में जान भरी, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने की

यादव के नए फिल्म प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में सुनिए सन 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई में अदम्य साहस, शौर्य और निडरता से बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला करने वाले, उसे पीछे हटने पर मजबूर करने वाले महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कहानी उन्हीं की जबानी पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कल दिन में 11 बजे।
3: तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करके फौज के टैंक पाकिस्तान के लोंगेवाला की तरफ निकले तो उसी वक्त जो हमारा पेट्रोल गया हुआ था बॉर्डर के ऊपर 30 बंदूक का, उन्होंने मेरे को वायरलेस सेट पर बता दिया कि सर ये तो पाकिस्तान की तरफ से इतने टैंक और इतनी पैदा फौज आपकी तरफ आ रही है।
2: तो सुनना ना भूल।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां कल दिन में 11 बजे।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस थोड़ी ही देर में 1:05 पर श्रोताओं, प्रादेशिक हिंदी समाचार और 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार। प्रादेशिक हिंदी समाचार शाम 6:10 पर भी सुनवाए जाएंगे और प्रादेशिक पंजाबी समाचार शाम 6:20 पर भी आप सुनेंगे। ये हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म संगीत दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। विविध भारती के मुंबई केंद्र से आप सुना करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर। वहीं से दोपहर 2 बजे सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे अपने श्रोताओं के लिए हिंदी में समाचार पहले दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, फिर रात 8:45 पर और रात 11 बजे भी। श्रोताओं, मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम होता है दोपहर 3 बजे। आज 3 बजे आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनेंगे। शाम 4 बजे श्रोताओं पिटारा कार्यक्रम होगा। इसमें बॉम्बे टॉकीज सिलसिले के तहत आप सुन सकेंगे गायिका प्रमिला दत्तार से की गई बातचीत का दूसरा हिस्सा। और इससे पहले दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज सुनेंगे नाटक शकुंतला। श्रोताओं, हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे लम्हे शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आज संगीतकार उषा खन्ना पर आधारित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा।

0: कुछ पंजाबी गीत सुनवाएंगे आपको शाम 6:30 पर। शाम 7:47 पर भी आप पंजाबी गीत ही सुनेंगे और पंजाबी गीतों का कार्यक्रम सुर सांझ सुनेंगे श्रोताओं रात 10:32 पर। फिर मुंबई केंद्र से शाम 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा, आज प्रस्तुत करेंगे सुनील दत्त। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी सिलसिले के तहत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पत्नी का पत्र सुनवाई जाएगी, इसका आज तीसरा भाग आप सुनेंगे। कार्यक्रम चित्रलोक रात 8:15 पर, आपके लिए कार्यक्रम रात 9 बजे होगा। आज के फनकार कार्यक्रम सुनेंगे मुंबई केंद्र से रात 9:30 पर और आज के फनकार हैं विक्की कौशल। छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे होगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह

प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा है कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की सुखना झील पर आयोजित इस वॉकेथॉन को प्रसार भारती के चंडीगढ़ में जोनल प्रमुख सुमित गोयल ने झंडी दिखाई। 2.5 व 5 किलोमीटर के इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी प्रमुख विकास भट्ट, समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा व कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह सहित आकाशवाणी परिवार के सेवारत व सेवामुक्त कर्मचारी व अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर मई माह में देशभर के केंद्रों में वॉकथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जन जन की वाणी आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वर्ष 2027 से दिल्ली में नए सीएनजी और डीजल ऑटो रिक्शा का पंजीकरण बंद करने का निर्णय लिया है। कल आयोग की 28वीं पूर्ण बैठक में तय किया गया कि इसके स्थान पर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ही मान्यता दी जाएगी। आयोग के अनुसार आगामी 1 जनवरी से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2028 से यह व्यवस्था फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत जैसे उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों में लागू होगी। फरीदाबाद के सड़क सुरक्षा समय सेवकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सड़क सुरक्षा अधिकारी डॉ. सौरभ शर्मा ने कहा कि स्वच्छ परिवहन की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं चिरायु योजना का लाभ सहज, त्वरित और बिना किसी बाधा के उपलब्ध करवाने के लिए रोहतक जिला प्रशासन ने आयुष्मान सारथी पोर्टल के माध्यम से विशेष नागरिक सुविधा पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पताल केवल उपचार केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि पात्र नागरिकों के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शक, सुविधा सहयोगी और योजना के सक्रिय क्रियान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल निजी अस्पताल संचालकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि सभी अस्पताल अपने परिसर में आयुष्मान योजना की पात्रता, उपलब्ध चिकित्सा पैकेज, हेल्पलाइन नंबर, मरीज अधिकार और अन्य आवश्यक जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि नागरिकों को अस्पताल पहुंचते ही योजना की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि आयुष्मान सारथी पोर्टल अस्पतालों को नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सक्रिय साझेदार बनाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: तीखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार. अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर.
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में सुनिए सन 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई में अदम्य साहस शौर्य और निडरता से बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला करने वाले उसे पीछे हटने पर मजबूर करने वाले महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कहानी उन्हीं की जबानी पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कल दिन में 11 बजे.
3: तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करके फौज के टैंक पाकिस्तान के लोंगेवाला की तरफ निकले तो उसी वक्त जो हमारा पेट्रोल गया हुआ था बॉर्डर के ऊपर 30 बंदों का, उन्होंने मेरे को वायरलेस सेट पर बता दिया कि सर ये तो पाकिस्तान की तरफ से इतने टैंक

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना आपकी कसम फिल्म से ये गीत। अब लीजिए सुनिए इन्हीं आवाजों में अगला गीत, फिल्म का नाम है आराधना।

0: श्रोतो, आपने सुने कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में सुनिए सन 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई में अदम्य साहस, शौर्य और निडरता से बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला करने वाले, उसे पीछे हटने पर मजबूर करने वाले महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कहानी उन्हीं की जबानी। पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कल दिन में 11 बजे।
2: तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करके फौज के टैंक पाकिस्तान के लोंगेवाला की तरफ निकले, तो उसी वक्त जो हमारा पेट्रोल गया हुआ था बॉर्डर के ऊपर 30 बंदों का, उन्होंने मेरे को वायरलेस सेट पर बता दिया कि सर, ये तो पाकिस्तान की तरफ से इतने टैंक और इतनी पैदा फौज आपकी तरफ आ रही है।
1: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओ, हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारा अगला प्रसारण हम आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे और आप सुनेंगे सबसे पहले कार्यक्रम सुलीला सफर।
2: ये कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है? और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देते हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत

दान करती हैं। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है

पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बजेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बज गया, क्या बात है। और जो हमने पहली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है।

एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरी की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहां, ये कैसा दस्तूर यहां। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बड़ी फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

अनीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें। गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनिता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रही है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था, इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुरी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं श्रोता, जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरे लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगति और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है, जो अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई, या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया, याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म का नाम क्या है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था तुम टूर पे जाते हो क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रहे हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।

और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में मेरी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हमें गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत देनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुए। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिवजी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा

केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद

सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है, लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवन काल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे समझना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी

0: 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
6: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
7: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
9: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिकोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन

0: खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डी के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कार्यजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

गोरी हसीना, अरे मुश्किल हुआ जीना बहारों के शहर में, ओ मेरी रानी हाय हाय हाय हाय। तुम ही कुछ बताओ ना, इतना सताओ, पाँव तले बैठो।

चाचा जिंदाबाद। इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने।

ये मेहती की लगती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव परमन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी, मन चाहेगी, मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
0: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मंच आएगी
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

0: कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दा केस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दा कई गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।
1: मेरे दिल में आज

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म डाक से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशि।

फासलों की खुशबू में महकती नजदीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एमजी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

तिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोन झोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

मीठी सी नींद झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ। सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रमण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

ಭಾರತಿ. नाट्य तरंग. आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला. रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी.

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता ना करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धड़ाधड़ ही कुछ ऊंचा नहीं चाहे, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी है महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, मेरा अपराधों को मारने के लिए नहीं।
5: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
5: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
5: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
5: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
5: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
5: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
5: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
4: किंतु आप संकोच न करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
5: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समुदाय लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यही रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में।

0: यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही है? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहनों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यही छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
1: इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया। चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
2: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
1: प्रेमवदा ठीक ही कहती है शकुंतला। तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी न मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
2: लताएं भी रूठती हैं क्या?
1: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है। समझी?
2: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
1: क्या समझी है तुम?
2: यही कि पिता कर्ण तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
1: वो कैसे?
2: तभी तो तू जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कर्ण कितने विवेकहीन हैं। ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शनि के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
1: अरे अनुसुईया, सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रेमवदा ने।
2: मुझे क्यों दोष दे रही है?
1: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
2: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रेमवदा, मैं पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
1: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
2: तेरे मुंह से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
1: परिहास न कर,
2: अच्छे नहीं करती।
1: बता। देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी बड़ी हो गई।
2: नहीं, तेरी तरह। फिर परिहास। अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
1: हाँ बता।
2: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
1: थत, तेरा तो सिर घूम गया है।
2: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
1: अच्छा,
2: पिता कर्ण कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
1: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान,
1: मेरी बहन जो है।
3: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
2: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
1: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
2: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारा।
3: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर पूर्ववंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
2: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
1: आपके आते ही भाग भी गया।
2: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना,
1: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
2: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
1: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
0: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
1: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जाओ।
4: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार के प्रबल हो रहे हैं।

0: और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपने अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य। किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
2: मैं अब क्या बताऊंगी, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कर्ण यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
2: और ही ढंग से?
1: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर मैं आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला, तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला। बहुत मीठा है इसका गला, करती रहती है सबका भला, इसने आज तक किसी को नहीं छला। जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है, कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
2: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी है।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कर्ण ने इसका पालन पोषण किया है।
2: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
1: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन ढूंढता हुआ दिखाई देने लगा।
2: फिर
1: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
2: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: किंतु क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं। अब मैं जाती हूँ और आर्य गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में। अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी? चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
2: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचते हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था। इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
2: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
2: ये लीजिए।
1: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है, आपके पास ये अंगूठी?
2: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए, आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
2: मैं आभारी हूँ।
3: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस मंत्र

0: चलो चलो चलो उस हाथी की यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चली।
1: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात।
1: चलो शकुंतला। हाँ हाँ चलो
3: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यही स्थिर होकर रह गया है। चलो तुमसे ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अन्न।

0: मांस खाओ। भगवान अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों भरे?
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो हम मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूँ माधव्य, अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूँ।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: है? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
2: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
2: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को नीलमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
2: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
2: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
3: महाराज की जय हो, दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो।
3: जो आज्ञा महाराज।
4: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
5: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूँ मुनिजन।
5: आप तो जानते ही आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है, उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य। अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
6: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
6: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
5: आर्य की जय हो।
6: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
6: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
6: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
2: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
2: आज से चार दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा, क्या करूं कैसे जाऊं कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
5: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
5: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है, उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
5: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाक से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे?

0: शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
1: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: सारे पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अंशिया?
2: प्रियंवदा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनुसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से इस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है। इसी से पूछकर देखें।
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो।
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
0: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो? इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सके।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाये हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सोचा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत?
0: किंतु क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, मम्मी टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब बातें सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने
2: अन्ना जी के गानों का शो करता, भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था। तो हम शो करते बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
1: जी,
2: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के, यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। एकादी ज्यादा असंभविक हरकत है को, तो आपके बारे में नहीं आई, तो वसंत मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी ने, नहीं नहीं वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ बुलाएगा बने कार्यक्रम था
1: हमारा, अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी, तो शर्मुखन में शो था और उनका प्रोग्राम में तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा,
2: तो अन्ना जी ने सुन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा,
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दे, फिर वो लोग चुप बैठे।
1: अच्छा।
2: एक छोटे गायिका थे, मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसे गीत गोपाल करके मराठी मांडलकर जी ने ही लिखा था, पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एक चैनल में।
1: अच्छा,
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पांच सुर है, तो खर्च के जो सुर होते हैं आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी, क्योंकि तब तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं देखा सुर ऊपर ले लू क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च कर रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
2: दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें, तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है, उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: भाग्य रहा मेरा। आशा जी के साथ मैंने एक गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: फिल्म बसन जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानी नौरे संभा। उसमें डांस की जुगल बंदी थी, जयश्री टी और मधुमती करके डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो उनकी दोनों की जुगल बंदी में दोनों के गाय, एक का पार्ट मैंने गाया एक का पार्ट आशा जी ने गाया।
0: अच्छा,
1: मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा, तो मैं बहुत दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद जाड़े में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ,
1: हमारा तो मतलब मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा,
1: क्योंकि उनको मालूम था असल जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, वो भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा,
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आपके हुक्म। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, वो गाना था भी अच्छी त्रैलोक के सुंदर, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से। हर तरह का गाना जो मैं बताने की जरूरत नहीं कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जी नहीं
0: प्राण जाए पर वचन, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे मतलब एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी, लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत।
0: ये गाना सुनिए।

0: निर्मला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा खुद का नाम था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पायला पिटला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको ज्यादा ज्यादा कभी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की
0: जी बिल्कुल,
1: तो मेरी शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे मुकाबले में, तो ये गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार उस लोना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ,
1: मुझे एक कोई किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बोला वो प्रमिला दत्ता जी की लावणी ना पाड़ा पिछले आंदा वो गाई है, और वो बहुत बहुत गुस्सा हुई, तो उसकी नहीं वो मेरी तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने गुजराती नहीं, गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने। उसका एक मंसूर का किस्सा है, नाम क्यों बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा
0: पत्रिकाइन
1: स्क्रीन नहीं ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
0: कटआउट
1: बनाया था, तो पहले लकड़े का था।

0: पन्ने हमने वो उस बहुत खराब होता था लकड़ा था, मैंने पतरे का बनाया था
1: जी, जी, जी.
0: मीटल का. तो उसका मेरा नाम प्रेमचंद आता है, सुनील यादव. वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं
1: जी, जी.
0: कि वो आपका बाबा आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था. तो रिकॉर्ड हुआ के बाद मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गाँव है मंदसौर करके. तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसके हम साइक्लोग्राम डालते थे.
1: अच्छा.
0: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
1: है
0: ऐसा लगता था. तो ऐसा भास होता था लोगों को. तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को ऑडियंस को. मैंने क्या क्या हुआ. मैंने मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की. तो नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे लगा रहे हो उसे.
1: अच्छा.
0: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था उसको रिकॉर्ड जैसा. लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया.
1: श्रोताओं की बात निकली है
0: जी.
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं. हर शहर का श्रोता अलग होता है.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल.
0: और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगभग पांच छह शांत धीमी गीत पूरा हा करके सामने सामने ये करते हैं.
1: अच्छा, अच्छा.
0: फिर दो गाने के बाद एक गाना कुलदास सफाज गाना, फिर ये मुड़ कर गाने के बाद ये मुड़, वो अपने हम समझना चाहिए. वो सिखा के नहीं आती. और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गाँव में छोटे से गाँव में भी, तो पहले दो गाने में अंदर जाता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार ये गानी चाहिए.
1: अच्छा.
0: तो होने से ज्यादा अच्छा होता था.
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ इसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
0: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे.
1: अच्छा.
0: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे. पहला बंगला जी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्म में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके.
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: रफी साहब का गाना एक दीवाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था.
1: ओहो.
0: और उसमें जाहिर इसके हमारे साथ होते थे
1: जी, जी.
0: तो वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको. रफी साहब बोले शुरू करते थे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे

0: जाने उसके अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो वो क्या जानू भाई आप ना के पूरा गाने का लेकिन अपने साथ तो भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं ये गाना सुन लेते हैं

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रहेगा कि मुझे मराठी फिल्म में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जैसे नाम होता है
0: जी जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरे को गाने ही गाते हैं, ये होता है, ये छपका दोष आता है
0: जी,
1: इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं उसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों
0: जी जी,
1: तो मैं खुश थी, मैं उसमें खुश थी और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पुणे के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो भी लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरा शो देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मिल
0: गया, अच्छी बात है,
1: दूसरा कोई कहने की जरूरत
0: नहीं है। शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो,
1: शालीनता हो
0: तो सवाल ही नहीं, वो दूसरा बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मिले, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के लिए,
1: कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए बहुत शो है।
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत सारे ठाडा इंडस्ट्री से सारी कंपनी के लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया कॉन्टैक्ट
0: किया। जी प्रमिला जी, अलग अलग अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और अपनी विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती है हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हो गए, आप मुबारक बेगम के गाए

0: में प्रस्तुत करती थी
1: निगम जी के,
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर अब आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
2: हाँ, यही मैं कहने वाली थी, पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
2: अरे आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं है, मतलब ऐसा कौन गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा,
2: मेरी राय होगी, वो शायद गलत भी हो सकते हैं, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था देश का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा मतलब आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान इतने तैयार थे कि वो लोग मतलब संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन मुझे ये गलत है ऐसा चिल्ला के जरा भी। मैं उसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरू में शुरुआत मेरे शो से की थी।
0: अच्छा।
2: तो वो समय तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और शुक्र सरगर ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में ताने लिए हुई है।
0: अच्छा।
2: हाँ, तो लिंगूरवार करके गाँव है छोटा सा मधुलिया के पास, तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास, शुरू से आते आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ नहीं आया कि नहीं, मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसका क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाए थे, आमिर खान साहब के गाए हुए हैं मुझे तो, लेकिन रफी साहब गा नहीं सकते ऐसा नहीं था, लेकिन वो कैरेक्टर के हिसाब से नौकरी के शायद वो ताने लिए हैं नौकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है। म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: श्रोता जो है, दर्शक जो है वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को
2: अब ये गाना है जो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जो उम्र कोई बहुत वो आना ही चाहिए, तो आना नहीं मिलेगा, इतना चिपक के चलता था शब्दों को
0: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
2: जी,
0: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं,
2: मिलता नहीं सही बात,
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करते हैं, अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
2: तो रिहर्सल,
0: हाँ
2: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, इस तरह से एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अपने बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही मेरा ये था कि जो मेरे ग्रुप है वो ही होना चाहिए
0: जी।
2: तो आज ये हूँ कि वार आया करिए कि वो आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का, तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वही रहता था सालों साल तक। अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने क्या कर रही थी शो करना अभी क्योंकि गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना उस चार साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें, तो गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
2: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन काल के हिसाब से जो बदली भी जाएगा जी जी, तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का उसमें एक रिहर्सल और शो
0: जी,
2: बस दूसरी रिहर्सल में एक ही रिहर्सल, वो मुझे कभी मालूम पड़ी होगा नहीं, तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में से दो तीन थे म्यूजिशियंस, संजय मराठे करके हैं, तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई और आज वो बहुत ही एस्टैब्लिश उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है, तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनको अगर नया सिंगर बता देती तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना
0: रिहर्सल,
2: एक रिहर्सल पसंद किया इसको
0: जी, जी। आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके फिर आगे इंडस्ट्री में?
2: विनय मानके
0: जी जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
2: जी, जी।
0: तो
2: उसको जिंदल किंग भी बोलते थे, बहुत सारे जिंदल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है स्टेज परफॉर्म होता है वो था,

0: बहुत सारे हल्के मुल्के बातें भी करने का मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खुशले जो गाते थे विष्णु नट बैठे हम, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो ये कुछ कुछ बिल्कुल लिखने बोले अशोक जी इतने भाई अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, मैंने वो समझाया। फिर वो मतलब ऐसा जो मजा आया
1: बहुत अच्छे।
0: फिर जो गाना था अन्ना जी का बोली सुनो दिल के खोदे, नई जमानी की नारी, नई जमानी की नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था हाथ में कंगन कानने वाली, तो बोला सा हाथ में कंगन कानने वाली, कभी बोला सा योगिता वाली, कभी बोला सा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, मजा
1: मस्ती के मूड में,
0: मस्ती के
1: मजा रहते थे।

0: सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो कोई भी सिंगर का गाना में गाता मुकेश जी का बोलो रफी साहब का बोलो किशोर कुमार जी का बोलो अच्छे गाने सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ लेकिन उसकी जाते उसकी आवाज में अच्छा लगा।
1: प्रमिला जी गाने सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं सरस्वती माँ कहते हैं उन्हें उनकी बात करते हैं कभी लता जी से मिलने का मौका मिला
0: मिला

0: जो मेरे प्रेरणा का बड़ा शो होता था हर साल
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कई तो इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार है, तो संगीतकार है, तो पॉलिटिशियन को अच्छा है, सब सीएम जो गए मेरे शो में आके गए हैं, पारवा के शो गए, सुंदा पाटिल, शंकरान चौहान और जो कुछ देशमुख, सुशील कुमार जी सिंह सब आगे, मैंने बड़ा शो हुआ करना था, मैं तुमने किसी को कुछ भी बुलाती थी, मैं तो फिल्म कलाकार है, तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, वो कुछ नहीं तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैं जन्म पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके कभी कैसे आना किया, कैसा कैसा कहा तू मेरा क्यों मिले, तो मैंने मेरा शो अस्तो दो रोजी बुढ़ी पाई वाला,
1: अच्छा
0: तो अपन यहाँ ऐसी खूब इच्छा है, लेकिन वो बाहर बाहर जाने वाली थी,
1: अच्छा
0: फिर मुझे मुझे पूछते कि कसो ना तुम्हें ऐसे प्रोग्राम करता है, उन्हें प्रवास कराया पहले गायला उभरा कसो करता है, मुझे अभी आदत हो रही है हो जाता है, लेकिन उसने उसके पास में नियम थी कि हम शो करते हैं,
1: मालूम था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में अलग अलग गाने उनके हैं, कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो

0: शर्मिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकलाया, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था।
0: हाँ, एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे और फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: പിക്കിലായി അമ്മ ആനമായി പാടാന പിക്കിലായി അമ്മ ഒന്നിട്ട് പാടാന പിക്കിലായി അമ്മ കുറച്ച് അലഗ് അലഗ് വെറൈറ്റി होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोले अभी अगली बार मैं गाऊंगी तो बहुत थक गई हूँ तो पारा के लिए मैं बोलूंगी अम्बा बोलेंगे तो वो लोग पहली शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बनकर अरे क्या कर रहे हैं आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छोटे पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी पूछ के किया उनको भी शायद डाला
1: जी प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया
0: करती थी
1: आपने
0: गाना सुना
1: जी जी जरूर।

0: पुराना बहुत डरे ज्यादा। और उधर गुजरात की एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम हेल्पलेस होते थे। तो एक एरिया है सूरत में, मान जब सुबह कठिया वाले हैं वो झिंगला पहनते हैं शॉर्ट, वो पहनवाने बैठे थे, वो एक आदमी पहले ही वो है ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहे तो पाँव ऊपर करके घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने में, ए प्रेमिला बहन नई पिक्चर में गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और तो पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे। थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ी होना चाहिए, तुमने भी जवाब देना या कुछ भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई थी, है ना, और आखिरी शो जब किया तब की जो लिस्ट, उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों के पसंद के पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, मेरे गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक और जो मैंने बोली गाय मिलाने को जी चाहता है, पारा लपेट लहंगा, तो मेरी जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा,
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुनकर। पुल्ला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा? आज के कार्यक्रम का हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना।

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, और ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पर और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिस तरह आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

0: गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: अपना बॉम्बे।

0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब दू जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को हमार दे और सरकार के देखा अवसर दिया।
1: कुछ साल किससे
0: मेरे पास जाने की मिला नौकरी उस परिंदे में जाने की, और जब दीदी म्यूजिक के साथ शुरू हुआ किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे

107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में पांच आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश दिया।

0: है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़दुद्दीन और गोइस केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म बीवी नंबर 1 से अभिजीत अनुराधा श्रीराम का गाया।

0: हॉट पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर हॉट पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: प्रोग्राम में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म बाजीगर से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

धड़कन फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। स्वास्थ्य विभाग का पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा अपने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों और महिला स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला के जरिए जन्म से 5 साल तक के शिशुओं और 64 साल से कम उम्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संवर्धन और रोग रोकथाम सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवा में शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भाशय ग्रीवा की जांच शामिल है। शिशुओं के समग्र जैसे शारीरिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत शिशु स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। पालन पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने वाले सभी शिशुओं के माता पिता को स्वस्थ शिशुओं और उनके बेहतर लालन पालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से उन्हें अवेयरनेस देना, सूचनात्मक पुस्तकाओं, ऑडियो विजुअल संसाधनों, वेबसाइट, रिकॉर्ड की गई हॉटलाइन, पालन पोषण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत परामर्श के रूप में प्रसव पूर्व अवधि के दौरान और फ्री स्कूल वर्षा के दौरान शिशुओं के विकास, शिशु देखभाल और पालन पोषण पर माता पिता को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद माता पिता को सहायक सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमें स्तनपान करने वाले माँ के लिए स्तनपान कोचिंग और सहायक समूह, प्रसवकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या या विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं वाले माता पिता के लिए मदद कार्यक्रम, नवजात और शिशुओं को टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस, डिफ्थीरिया, टेटनस, खांसी, न्यूमोकोकल संक्रमण, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा आयोजित नियमित समीक्षाओं की श्रृंखला शामिल है, जो स्वास्थ्य और विकासात्मक संबंधी समस्या वाले शिशुओं की समय पर पहचान और रेफरल प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। इसमें नवजात के लिए पहला स्वास्थ्य परामर्श, शिशु के विकास मानकों की अवधिक निगरानी, सुनवाई और विशिष्ट आयु में प्री स्कूल दृष्टि स्क्रीनिंग शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039।

0: 9515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र पूरी गर्भावस्था और प्रसव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सार्वजनिक अस्पतालों के प्रसूति विभाग के सहयोग से एक व्यापक प्रसव पूर्वक साझा देखभाल कार्यक्रम संचालित करता है। प्रसव के बाद सभी महिलाओं को प्रसव बाद जांच और परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक पर सलाह दी जाती है। केंद्र प्रसव बाद माताओं को सहायता समूह और व्यक्तिगत परामर्श में अनुभव साझा करता है। इसके माध्यम से जीवन में बदलावों को अनुकूलित करने में भी मदद करता है। बच्चा जन्मने की उम्र वाली महिलाओं को उचित गर्भरोधक तरीकों का परामर्श और पर्चा प्रदान किया जाता है। परामर्श उन ग्राहकों को भी दिया जाता है जिनको बांझपन की समस्या होती है और विशेषज्ञों के पास रेफरल की उचित रूप में प्रबंध किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा जांच परीक्षण प्रदान करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना लक्ष्य है। महिला स्वास्थ्य केंद्र 64 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, शारीरिक परीक्षण और उपयुक्त जांच परीक्षण प्रदान किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में सत्र के आधार पर महिला स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जाती है। कार्यशालाओं और सहायक समूह के रूप में शैक्षिक कार्यक्रम नियमित रूप से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ WHCS में विभिन्न सेवा सत्रों में आयोजित किया जाते हैं। शिशुओं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अपने कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो ये कार्यक्रम फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

0: जी आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता प्रस्तुत है प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज के सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत। आज के इस सफर में आपकी हम सफर

हूँ मैं शालिनी। दोस्तों, भारतीय फिल्म जगत में एक से बढ़कर एक संगीतकार हुए हैं। उनका दिया संगीत आज भी जब हम सुनते हैं तो मुंह से वाह वाह ही निकलती है। एक दौर था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन जैसे उस्ताद संगीतकारों का बोलबाला था। तब हमारी आज की फिल्मकार ने खुद को संगीत जगत में स्थापित किया और अपने दुपट्टे को परचम बनाकर ऐसी धुनें रची जो जाड़े की नर्म धूप की तरह हमारे

उस दौर के एक दिग्गज संगीतकार ने जब उनसे पूछा, क्या तुम लता मंगेशकर और आशा भोसले की तरह गा सकती हो? तो वो बोली, जी नहीं, उनकी तरह तो नहीं गा सकती। तो संगीतकार ने कहा, तो फिल्मों में गाने का इरादा छोड़ दो। लड़की आज्ञाकारी थी, उसने गाने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद इस लड़की का नाम ताजा हवा की झोंकी जैसी धुनें रचने वाली संगीतकार के

कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग आप सुन रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज हम बात कर रहे हैं अपने जादुई और अनुशासित संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली उषा खन्ना की। उषा खन्ना का जन्म 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर का संगीत से रिश्ता किसी से भी छिपा नहीं है। यही वजह है कि ग्वालियर का खुद का एक संगीत घराना है। ऐसे ही ग्वालियर में उषा खन्ना का जन्म हुआ। तब देश आजाद नहीं हुआ था। उषा के पिता मनोहर खन्ना तत्कालीन ग्वालियर राज्य सिंधिया रियासत में जल निर्माण विभाग में सहायक अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। जाहिर है उषा को बचपन से ही गीत और संगीत की

बड़ी रोमांचक है। कहते हैं कि उनकी जान पहचान तब के लोकप्रिय संगीत निर्देशक ओपी नैयर से थी। ओपी उनकी गायकी से काफी प्रभावित थे, तो उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तित्व शशधर मुखर्जी के पास उन्हें ले जाकर गायिका के तौर पर मिलवाया। शशधर ने अपनी फिल्म में उषा से एक गाना गवाया। गीत और संगीत दोनों कर्णप्रिय थे और हिट भी। जब शशधर को पता चला कि उषा ने गीत की रचना खुद अपने ही बलबूते पर की है, तो वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उषा को थमा दिया। लेकिन महज 6 महीने बाद ही उनके संगीत का जादू ऐसा दिखा कि मुखर्जी ने उन्हें अपनी ड्रीम फिल्म दिल देखो का म्यूजिक कंपोजिंग का काम दे दिया।

0: पूछो पूछो पूछो परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, ओ हो हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी।
1: बतौर संगीतकार ये उषा के लिए बड़ा ब्रेक था। इस फिल्म से आशा पारेख की भी एंट्री हो रही थी और ये फिल्म सुपरहिट रही। इसकी सफलता के कारण मुखर्जी ने अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत रचने का काम भी उषा खन्ना को दे दिया। 1961 में बनी इस फिल्म की हीरोइन भी आशा पारेख ही थी। इसके बाद भी उषा ने अनेक फिल्में की, दिल देखे देखो, हवस, साजन की सहेली, आप तो ऐसे ना थे और सौतन जैसी फिल्में, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म थी दिल परदेशी हो गया।

उषा खन्ना की धुनों में विविधता के साथ ऐसी सहजता है कि जब आप हम तुमसे जुदा होके छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अपने लिए जिए तो क्या जिए। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, चांद को क्या मालूम अजनबी कौन हो तुम, तू जो कहे तो राधा बने मैं, या जिंदगी प्यार का गीत सुनते हैं तो साथ साथ गुनगुना।

श्रीदेवी फिल्म चालबाज में एक जगह कहती है, मैं मर्दों की बनाई इस दुनिया में अपनी शर्तों पर जीती हूँ। उसी तरह उषा खन्ना ने हुनर के दम पर अपनी शर्तों के हिसाब से पुरुष संगीतकारों की भीड़ में अपना एक अलग मुकाम बनाया। मुमकिन है नई पीढ़ी भले ही उषा खन्ना के नाम से अनजान है, लेकिन उनकी धुनों वाले गाने युवा पीढ़ी भी

मनीषा खन्ना ने हिंदी फिल्मों में सुपरहिट संगीत दिया। इसके बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वे असली हकदार हैं। उनका करियर उतार चढ़ाव भरा और संघर्ष में रहा। शायद महिला होने के कारण संगीत निर्देशक के रूप में उनके जीवन को ज्यादा संघर्ष से भर दिया।

राजा खन्ना ने धीरे लोकप्रिय ध्वनि बनाई। उनकी बनाई ध्वनि आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं, और एक कलाकार के लिए इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता कि दशकों पहले उनके बनाए गीतों को लोग आज भी उतने ही प्यार से सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे।

0: आशा खन्ना को ऐसा कर्मप्रिय संगीत देने के लिए हमारा दिल से शुक्रिया। इसी के साथ कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग से मैं शालिनी आपसे लेती हूँ इजाजत। संवाद और संपादन रमन भगत, प्रस्तुतकर्ता अश्विनी कुमार। नमस्कार।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और

0: साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में सुनिए सन 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई में अदम्य साहस, शौर्य और निडरता से बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला करने वाले, उसे पीछे हटने पर मजबूर करने वाले महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कहानी उन्हीं की जबानी पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कल दिन में 11 बजे।
2: तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करके फौज के टैंक पाकिस्तान के लोंगेवाला की तरफ निकले तो उसी वक्त जो हमारा पेट्रोल गया हुआ था बॉर्डर के ऊपर 30 बंदूक का, उन्होंने मेरे को वायरलेस सेट पर बता दिया कि सर ये तो पाकिस्तान की तरफ से इतने टैंक और इतनी पैदा फौज आपकी तरफ आ रही है।
1: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुन पेश है एक गैर फिल्मी गीत फाल्गुनी पाठक दी आवाज़ च।

ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के अपने परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का मौका देने का फैसला किया। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने 12वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री आदि बद्री नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की और आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा सुखना झील पर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी की वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपियों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बोर्ड ने कहा है कि जो विद्यार्थी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी 19 से 22 मई के बीच अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पूर्ण मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पाई गई समस्याओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच जमा किए जा सकते हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी विद्यालयों के 57 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। चंडीगढ़ में पंजाब लोक भवन में आयोजित प्रतिभाशाली छात्र सम्मान समारोह के दौरान श्री कटारिया ने चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धियों ने चंडीगढ़ को गौरवान्वित किया है तथा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में निरंतर बढ़ रही शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है।

ने बताया कि इस वर्ष 12वीं के परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.25 रहा, जो राष्ट्रीय औसत 85.2% से 2.05% अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष 29 विद्यार्थियों के मुकाबले 57 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए और 348 विद्यार्थियों ने 90% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 225 थी, जो शैक्षणिक परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, उभरती तकनीकों और आधुनिक शिक्षण अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदिबद्री नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की तरक्की की कामना की। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। हिसार में भी आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह

0: कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदिबद्री नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की तरक्की की कामना की। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। हिसार में भी आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि देशभर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है, पूरे देश के अंदर है। हम आर जो पार्टी के जो मंडल सदर से लेकर के जितने भी पदाधिकारी है वो सारे बैठ करके और सरकार की नीतियों पे सरकार के जो कार्य करे, पार्टी के अंदर कैसे अनुशासन चाहिए, क्या क्या हमारी योजनाएं है, उस पर चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसीलिए ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है।
0: तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान और इसराइल ईरान युद्ध के बाद में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसके कारण इस तरह के फैसले लेने पड़े हैं। श्री गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा अपना काफिला कम करने का काम किया गया है। उन्होंने भी अपने काफिले से पायलट गाड़ी को हटाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम ईंधन खर्च करने की जो अपील की है उसका सभी को एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की सुखना झील पर आयोजित इस वॉकेथॉन को प्रसार भारती के चंडीगढ़ में क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने झंडी दिखाई। 2.5 किलोमीटर के इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी प्रमुख विकास भट्ट, समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा व कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह, पत्र सूचना दफ्तर के प्रमुख प्रीतम सिंह, दूरदर्शन समाचार प्रमुख आकांक्षा सहित आकाशवाणी परिवार और सहयोगी कार्यालयों के सेवारत व सेवामुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। देश भर में किए जा रहे इन आयोजनों का उद्देश्य जन जन की वाणी आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। हरियाणा पुलिस की नई आईटी पहल के तहत पहली बार प्रदेश में नवनियुक्त कांस्टेबल के जिला व यूनिट आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कंप्यूटर पर एक क्लिक के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया। इस पारदर्शी प्रणाली के तहत 5100 पुरुष एवं 1797 महिला कांस्टेबल से ऑनलाइन माध्यम से उनकी पसंद पूछी गई ताकि उन्हें उनकी मेरिट अथवा वरिष्ठता के अनुसार उनकी पसंद के जिले व यूनिट आवंटित किए जा सकें। आज शनिश्चरी अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा व देश के अन्य राज्यों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और जरूरतमंदों को काले तेल, उड़द की दाल, काले कपड़े, छाता, जूते चप्पल का दान किया। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे और सरोवर के तट पर सरसों के तेल के दीपक जलाए गए, दान पुण्य किया। पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि आज ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का महासंयोग बना है जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। पलवल स्थित जाट धर्मशाला में आज जाट समाज विकास समिति द्वारा चौपाई महामेले का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने महामेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की जबकि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम एवं पूर्व विधायक दीपक मंगला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा स्वच्छता सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत संचालित माहवारी स्वच्छता मिशन को जींद जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। आंगनवाड़ी निरीक्षक दर्शना देवी ने बताया,
2: हमारे आंगनवाड़ियों में सभी में सैनिटरी पैड की स्कीम चालू की गई है जिससे कि औरतों को साफ सफाई के बारे में भी जागरूक किया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें और अच्छी रहें। और सभी बीपीएल परिवार में जितनी भी महिलाएं 10 से 45 वर्ष की होती हैं सभी को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं जिससे उन्हें सैनिटरी पैड बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के अपने परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का मौका देने का फैसला किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज नीट यूजी 2026 परीक्षा नाल संबंधित जीव विज्ञान पेपर लीक मामले च इक मुख मुलजम नूं गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर केंद्रीय सेहत मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों डेंगू की रोकथाम बारे जागरूकता वधाउण ते सुरक्षित वातावरण यकीनी बनाउण लई एकजुट होण दा सद्दा दित्ता। तरन तारण पुलिस ने गुरदासपुर च SDM अनुप्रीत कौर रंधावा भ्रष्टाचार के मामले च किया गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने लुधियाना ते होरना थावां तों 132 व्यक्तियों गिरफ्तार करदिया उत्तरी भारत के हुण तक के सब तो वड्डे साइबर धोखाधड़ी सिंडीकेट का पर्दाफाश किया। खेती विरासत मिशन वालों पराली संभाल ते वातावरण सुरक्षा लई 10 रोजा पराली संभाल चेतना यात्रा की शुरुआत अते मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा च कई थावां ते 22 जून तक गर्मी पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अज नीट यूजी 2026 की परीक्षा नाल संबंधित जीव विज्ञान पेपर लीक मामले में एक मुख्य मुलजम गिरफ्तार किया। मुलजम मनीषा गुरुनाथ मंथारे पुणे महाराष्ट्र तो एक सीनियर बापनी अध्यापक ने उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी वालों एक माहर वजो नियुक्त किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि मुलजम को बॉटनी ते जूलॉजी प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच सी। CBI ने कहा कि उसने 14 मई गिरफ्तार की गई मनीषा राही संभावी नीट उम्मीदवार इकट्ठा किया। पुणे च उसकी रिहायश से इन्होंने विद्यार्थियों ने विशेष कोचिंग क्लासा लगाई। इस मामले हुण तक 9 मुलजमान दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहिल्यानगर तो गिरफ्तार किया गया। इन्हों 5 मुलजमान पहला ही अदालत में पेश किया जा चुके हैं। उन्होंने पूछगिछ 7 दिन पुलिस हिरासत रिमांड से लिया गया। पिछले 24 घंटों में CBI ने देश भर में 6 थावां पर छापेमारी की है। कई अपराधिक दस्तावेज लैपटॉप बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए। उधर केंद्रीय स्कूली शिक्षा बोर्ड ने 12वीं जमात के विद्यार्थियों के नतीजा ऐलानने की सहूलतों की रूपरेखा देने वाला एक नोटिस जारी किया है, जो एक निरपक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करता है। नोटिस में बोर्ड ने कहा है कि अपने नतीजों से असंतुष्ट विद्यार्थी 2 ग्रेड की समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। कौमी डेंगू दिवस के मौके पर केंद्रीय सेहत मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों को डेंगू की रोकथाम बारे जागरूकता वधाउण ते साफ ते सुरक्षित वातावरण यकीनी बनाउण लई एकजुट होण दा सद्दा दित्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी व्यापक जांच इलाज सहूलतों ते जागरूकता मुहिम राही डेंगू की रोकथाम के उपरालों को मजबूत करना जारी रख रही है। इस साल की थीम डेंगू की रोकथाम लई भाईचारक भागीदारी जांच करो साफ करो और ढाके रखो बारे जानकारी दिंदिया श्री नड्डा ने डेंगू खिलाफ लड़ाई च सरगर्म भाईचारक भागीदारी की महत्ता ते जोर दिता। इस दौरान पंजाब भर में भी वख-वख थावां ते लोगों नूं इस बारे जागरूक किया गया। जिला मोहाली दे सेहत विभाग वल्लों डेंगू खिलाफ जागरूकता रैली कढ़ी गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर गिरीश डोगरा ने रैली नूं फेज 3B1 ते सरकारी स्कूल तों रवाना किया, जिस विच सेहत विभाग के कामयां ते नर्सिंग कॉलेजां दे विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। रैली दौरान लोगों नूं डेंगू दे लक्षण कारण बचाव ते इलाज संबंधी पंफलेट वंडे गए। रैली दौरान डॉक्टर अनामिका सोनी ने कहा कि इसका मकसद लोगों की इस मारू बुखार बाबत जागरूकता वधाउणा है। इस दौरान राष्ट्रीय डेंगू दिवस मौके पंजाब सेहत विभाग के सेवामुक्त डायरेक्टर डॉक्टर आदर्श पाल कौर ने लोगों को अपील करते हुए आख्या
1: आने वाले समय विच बरसातां होणगियां, बारिश का पानी खड़ा होएगा ते जिवें कि तुहानूं पता ही है कि साफ पानी विच डेंगू का मच्छर पनपदा है ते इह दिन दे वेले कटदा है। इसलिए असीं पानी नहीं खड़न देना अपने आले दुआले ते पूरे शरीर नूं ढक के रखिए। मॉस्किटो रिपेलेंट जो आउंदे आ उहनां दी वरतों करनी ते खास करके बच्चों का ध्यान रखना ते बजुर्गों का ध्यान रखना। जे बुखार हो जांदा है तां नेड़े दे हस्पताल विच जाके अपना इलाज करवाओ, इहदे तों घबराउण दी लोड़ नहीं।
0: तरन तारण पुलिस ने गुरदासपुर में SDM अनुप्रीत कौर रंधावा भ्रष्टाचार के एक मामले में अज सवेरे उनकी रिहायश तो गिरफ्तार किया। साढ़े पत्रकार ने दसिया कि गुरदासपुर विखे SDM वजों सेवा निभा रहे PCS अधिकारी अनुप्रीत कौर रंधावा अज सवेरे पट्टी पुलिस वालों हिरासत में लिया गया। उन्होंने गिरफ्तारी पंजाब और राजस्थान नाल जोड़न वाले कौमी शाहरा 54 लई एक्वायर की जमीन में हुए कथित गबन नाल संबंधित है, जिस विच 1,63,00,000 रुपए के गबन का मामला है। यह खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR_RNU_Jalandhar। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR_Jalandhar। यूट्यूब पे साडा चैनल है @AIR_Jalandhar।

0: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि अध्यापक सिखलाई आधुनिक क्लासरूम के अकादमिक सुधारा च सरकार के निवेश ने पंजाब नूं सिक्ख्या च देश के मोहरी सूबे विच बदल दिता है। अज चंडीगढ़ विच फिनलैंड तो उन्नत सिखलाई लई 72 सरकारी स्कूल अध्यापकों के हुण तक के सब तो वड्डे बैच नूं रवाना करदा मुख्यमंत्री ने कहा कि आलमी पद्धर सिक्ख्या प्रणालियों का सामना क्लासरूम के अंदर इनकलाबी तब्दीलियां लियाउण च मदद कर रहा है ते सरकारी स्कूलों नूं हर मापे की पहली पसंद बनाउण ते सूबा सरकार के मिशन नूं मजबूत कर रहा है। अध्यापकों नूं जाण तों पहलां संबोधन करदा मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापक 29 मई तक आधुनिक सिक्ख्या विधियां नवे क्लासरूम अभ्यास विद्यार्थी केंद्रित सिखलाई मॉडल ते विश्व पद्धर के बेहतरीन सिक्ख्या प्रणालियों का तजर्बा करेंगे। मुख्यमंत्री ने दस्या
1: अज पंजाब दे 72 टीचर वह फिनलैंड दे विच टीचिंग दे नवे नवे तरीके टीचिंग दे नवे नवे साधना बारे ट्रेनिंग लैण लई दिल्ली रवाना होए ने क्योंकि इन्हें सेंटर मन्निया जांदा पढ़ाई दे खेत्र च ट्रेनिंग देण दा। इह बैच जिहड़ा इह 29 मई तक उत्थे रहूगा। इह हुण तक दा सब तों वड्डा बैच है। आउण वाले दिनां दे विच होर भी जिहड़े टीचर साडे ने उह सिंगापुर IIM अहमदाबाद जिथे जिथे भी जरूरत होगी असीं भेजदे रहांगे।
0: पंजाब पुलिस ने उत्तरी भारत के सब तो वड्डे साइबर धोखाधड़ी गिरोहां विचों एक दा पर्दाफाश करदे लुधियाना ते होरनां थावां तों 132 लोकां नूं गिरफ्तार कीता है। मुलजम कथित तौर ते जाली कॉल सेंटर चला रहे सन जो पॉप अप घोटालिया रिमोट एक्सैस टूल्स अते जाली बैंक सुरक्षा नेट राही विदेशी नागरिकां समेत पीड़ितां नूं निशाना बनाउंदे सन। इस बारे लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि पुलिस ने मुलजमां तों 1,07,00,000 रुपए नकद 98 लैपटॉप 229 मोबाइल फोन ते 19 महंगे वाहन जब्त कीते ने। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति दिल्ली गुरुग्राम देहरादून ते दक्षिणी भारत तों ने। अधिकारियों ने कहा कि गिरोह खात्यां च पैसे ट्रांसफर करने लई बैंक अधिकारियों का रूप धारण कर लैंदा सी। इस संबंधी अगली जांच की जा रही है। होशियारपुर नेड़े पिंड चक समाणा विखे बीते दिन बोरवैल च डिगे 4 साल बच्चे नूं करीब 9 घंटे की भारी मशक्कत तों बाद सुरक्षित बाहर कढ लिया गया। बच्चे गुरकरण सिंह नूं रात करीब 12:40 तों बोरवैल विचों बाहर कढ़िया गया ते तुरंत मैडिकल जांच लई हस्पताल ले जाया गया। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन अते SSP संदीप कुमार मलिक ने बचाव कार्य की अगुवाई की ते ऑपरेशन सफल बनाने लई बचाव टीमां दी शलाघा की। डिप्टी कमिश्नर ने वेरवे सांझे करदे दस्या
2: बहुत वड्डी समस्या चो असीं निकले और असीं बयान नहीं कर सकते अथक प्रयास साडी NDRF दी बाबा दीप सिंह सोसाइटी दी सिविल डिफेंस ने बहुत उमदा हरबरी दी तरह काम किया। पुलिस ने क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी की है। पूरा जिला प्रशासन एक पैर ते खड़ा रहा। इत्थे पिंड वाले सरपंच साहबान इत्थे दे लोकल लोग नौजवान वीर साडे किसी ने कोई कमी नहीं छड्डी और असीं बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि बच्चा सेफ निकलिया है।
0: पंजाब के जेल मंत्री डॉ रजोत सिंह ते लोकसभा मैंबर डॉ राजकुमार चब्बेवाल भी इस कार्रवाई दौरान मौके पर मौजूद रहे ते गुरकरण नूं बचाने लई सारियां टीमों वल्लों कीते अंतक उपरालियां दी शलाघा कीती। खेती विरासत मिशन वल्लों पराली संभाल ते वातावरण सुरक्षा लई 10 दिनों पराली संभाल चेतना यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा नूं बांस की खेती के माहर ते महाराष्ट्र विच बैंबू मैन वजों जाने जांदे पाशा पटेल पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साबका निदेशक आदर्श पालविद अते उमेंद्र दत्त ने झंडी दिखा के रवाना किया। फिरोजपुर फरीदकोट मुकतसर बठिंडा के 1200 पिंडों कवर करद यह यात्रा पंजाब के पिंडा च किसानों पराली को अग लगाने की बजाय विज्ञानिक तरीके संभालने वास्ते जागरूक करेगी। इस मौके बोलद पाशा पटेल ने कुदरती खेती ते वातावरण संभाल लई खेती विरासत मिशन के उपरालों की शलाघा की। श्री विज ने कहा कि पंजाब पिछले 4 साल दौरान पराली साड़न के मामलों च लगभग 90% कमी आई है। इस मौके झोने की पराली का खेत में निपटारा करने अग न लगाने वाले किसानों सम्मानित भी किया गया। मौसम विभाग ने पंजाब के हरियाणा कई थावां ते 22 जून तक वध तो वध तापमान च 4 तों 5 डिग्री सैलसीयस का वाधा होने नाल गर्मी पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया अते लोकां नूं इस तों बचाव करन दी अपील की है। मौसम विभाग वल्लों जारी वेरवे मुताबिक 17 तों 22 मई तक इन्हां दोवें सूबें समेत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ च तापमान वधेगा। पंजाब च गर्मी नाल प्रभावित होने वाले जिलों च फरीदकोट फाजिलका मुकतसर मानसा बठिंडा गुरदासपुर ते फिरोजपुर मुख तौर ते शामिल ने। इस दौरान 42.6 डिग्री सैलसीयस नाल पंजाब च फरीदकोट अते 42 डिग्री सैलसीयस नाल हरियाणा च सिरसा सब तों गर्म शहर रहे। आईपीएल क्रिकेट विच अज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला कोलकाता दे ईडन गार्डन च शामी 7:30 गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तों केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज नीट यूजी 2026 परीक्षा नाल संबंधित जीव विज्ञान पेपर लीक मामले च एक मुख मुलजम नूं कीता गिरफ्तार। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर केंद्रीय सेहत मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों नूं डेंगू दी रोकथाम बारे जागरूकता फैलाउण अते सुरक्षित वातावरण लई एकजुट होने का सद्दा दिता। तरन तारण पुलिस ने गुरदासपुर च SDM अनुप्रीत कौर रंधावा नूं भ्रष्टाचार के मामले च गिरफ्तार किया। खेती विरासत मिशन वल्लों पराली संभाल ते वातावरण सुरक्षा लई 10 दिनां पराली संभाल चेतना यात्रा की शुरुआत

0: ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 7:30। ਨਮਸਕਾਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में सुनिए सन 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई में अदम्य साहस शौर्य और निडरता से बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला करने वाले उसे पीछे हटने पर मजबूर करने वाले महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कहानी उन्हीं की जबानी पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कल दिन में 11 बजे।
2: तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करके फौज के टैंक पाकिस्तान के लोंगेवाला की तरफ निकले तो उसी वक्त जो हमारा पेट्रोल गया हुआ था बॉर्डर के ऊपर 30 बंदों का, उन्होंने मेरे को वायरलेस सेट पर बता दिया कि सर ये तो पाकिस्तान की तरफ से इतने टैंक और इतनी पैदा फौज आपकी तरफ आ रही है।
1: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां कल दिन में 11 बजे।
0: असि आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं। श्रोते हुण तुसी सुनोगे कुछ पुराने पंजाबी गीत। शुरू करदे हां अज दा प्रोग्राम लाल चंद यमला जट दिखाए इस गीत दे नाल।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो,
2: बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
3: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
3: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
3: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जाँच भी मुफ्त करा सकते हो।
0: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: श्यामलाम मातरम, वंदे वंदे मातरम।
2: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

फौजी भाइयों नमस्कार। इससे पहले भी हम कई बार मिले हैं, बल्कि बार बार मिले हैं, कभी तपते हुए रेगिस्तानों में, कभी बर्फ से ढके पहाड़ों पर। और मैंने खुद देखा है जिंदगी की हर राह में, हर मोड़ पर, हर मंजिल पर आप आजादी की हिफाजत कर रहे हैं, वतन की हिफाजत कर रहे हैं। कई बार सोचा कि आपसे आपका नाम पूछूं, फिर ख्याल आया सैनिक का तो एक ही नाम होता है, सैनिक। वो तो सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़ता है, वतन के आजाद गुलशन में खिले फूलों और गुंचों की हिफाजत करता है।

फौजी भाइयों, देश की सीमाओं पर मैं आपको कई बार मिला, आपका मनोरंजन किया, वो यादें अब भी मेरे दिल में ताजा हैं। चंद साल हुए किशोर कुमार साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया कि वो हमारे साथ अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में आकर आपका मनोरंजन करें। किशोर कुमार साहब इससे पहले स्टेज पर नहीं गाते थे। खैर, हम लोग नथुला और गैंगटॉक के बीच बर्फ से ढके हुए पहाड़ी कैंप में पहुंचे। हमारे पहुंचने के बाद ही देखते देखते सैनिकों ने लकड़ी का एक स्टेज बनाया और खुद बर्फ पर पलती मारकर बैठ गए। प्रोग्राम शुरू किया तो किशोर साहब स्टेज पर गाने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि होंठ मैं हिलाऊंगा और स्टेज पर मेरे पीछे खड़े होकर वो गाएंगे। खैर, गाना शुरू हुआ और कुछ ही

बाद मैं होंठ हिलाते हिलाते किशोर साहब के सामने से हट गया। किशोर साहब बहुत चिल्लाए मगर तालियों की गूंज ने उन्हें गाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह फौजी भाइयों, किशोर साहब की शर्म का घूंघट आप ही के सामने पहली बार उठाया गया। और आपको याद है वो गाना कौन सा था और कौन सी फिल्म का था? पड़ोसन का। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।

लद्दाख से दम पे दम भरते हुए हम सब दिल्ली आए, गांजे का दम नहीं, फौजी भाइयों के प्यार का दम। दिल्ली पहुंचकर हम सीधे पंडित नेहरू जी के बंगले पर गए उन्हें सलाम करने। उन्हीं दिनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए एक अमेरिकन टीम आई थी। पंडित जी ने हमसे मिलवाया और कहा कि ये हैं हमारे फिल्मी माउंटेनियर्स, अभी लद्दाख से आए हैं फौजी भाइयों का मनोरंजन करके। और फिर पंडित जी ने फरमाइश की कि वही गाना गाकर सुनाओ जो हमारे जवानों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। लीजिए, ये है वो गाना।

0: क्लस्टरिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कागज कलम नहीं इस बार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
3: देव दर्शन धूप
4: हरा पानी वो लोग कई मील दूर से लाया करते थे। उनके जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। गरीबी महामारी की तरह फैली हुई थी। मगर कोई भी राजपूत अपना गांव अपनी धरती छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था और न ही गरीबी से तंग आकर कोई भीख मांगता हुआ दिखाई देता था। उस वक्त मुझे लगा ये भी एक जंग है, कुदरत के साथ जंग, गरीबी के साथ जंग, हालात के साथ जंग और इनकी जिंदगी मसलसल एक जंग है। ये भी बहुत बड़े सैनिक हैं। भगवान करे राजस्थान की उस तपती हुई रेत पर बादल झूमे, सावन बरसे।

फौजी भाइयों, अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में सिर्फ मैं ही नहीं हूं बल्कि फिल्म दुनिया के बहुत से कलाकार जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो सब हैं। उन्हीं कलाकारों के साथ हम एक बार जम्मू में आपका मनोरंजन कर रहे थे कि अचानक खबर आई

मीना कुमारी जी का इंतकाल हो गया। फौरन एक आर्मी ऑफिसर ने स्टेज पर आकर इस खबर का ऐलान किया और उसी समय यह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। सारे फौजी हमारे गम में बराबर के शरीक थे और शेर और नगमे की वो जमी हुई महफिल मीना जी की याद में डूब गई। हर जबान पर उनका नाम था, हर दिल में उनका ख्याल था और मैं एक कोने में खड़ा सोच रहा था, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।

फौजी साथियों, फिल्मकार सुनील दत्त द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: कश्मीर जन्नत नदी। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ।
1: दीप आनंद
2: फौजी भाई, आपने 30 वर्ष की फौजी जिंदगी में मैंने कितने फिल्मों में काम किया मुझे पूछा, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछले सारा टटोल टटोल का खोज निकालना रुक जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है, रुक कर इसी मुख कर वो माइलस्टोन्स को क्यों मिला।
1: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला, हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: फिल्मकार सुनील दत्त द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

उन्हें पहली बार हार्ट अटैक हुआ था और हम लोग कहीं प्रोग्राम करने जा रहे थे। मुकेश भाई भी चलने को तैयार हो गए। मैंने कहा, मुकेश भाई सफर लंबा है, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो मुकेश भाई ने कहा, तुम चिंता ना करो, जवानों को खुश करने में मुझे कभी और किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो वो हमारे साथ गए और अपनी आवाज से जवानों के दिलों को गर्मा

0: अच्छा फौजी भाइयों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा, आइंदा जब भी आप याद करेंगे मुझे अपने करीब पाएंगे। नमस्ते।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया फिल्मकार सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। हुन पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीट यूजी प्रीख्या विच जीव विज्ञान पेपर लीक मामले विच मुख दोषी नूं गिरफ्तार कीता। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात दे नतीजियां तों असंतुष्ट विद्यार्थियों नूं अपनी उत्तर पुस्तकावां दी समीक्षा करन दा मौका देण दा फैसला कीता। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकणगे। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 12वीं जमात विच 95% तों वध अंक प्राप्त करन वाले सरकारी स्कूलां दे होनहार विद्यार्थियों नूं सम्मानित कीता। हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर विच भाजपा 2 दिना सिखलाई प्रोग्राम दा उद्घाटन कीता। इस तों पहला श्री आदि बद्री नारायण मंदिर विच पूजा कीती। आकाशवाणी दी स्थापना दे 90 शानदार साल पूरे होने दे संबंध विच ऑल इंडिया रेडियो दे चंडीगढ़ केंद्र ने सुखना झील दे

आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आइए सुनते हैं पत्नी का पत्र, इस कहानी का तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

0: पिछले हफ्तों में आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपने अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहाँ पुरुष सत्ता है, जहाँ स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं है। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ जाती है, लेकिन मृणाल के परिवार के सदस्य बिंदु को सम्मान नहीं देते। बिंदु का रंग काला था। विवाह में अड़चने होती है, लेकिन तय हो जाता है विवाह पर एक पागल व्यक्ति से। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना। अब सुनिए आगे। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्हें लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी
1: मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो।
0: मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही ना लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहाँ जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था, सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है, भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था, बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता, जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था, सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा।

बुराई भी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जी जी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु? बोलना बीबी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया। मैं वहीं कोले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी ससमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आए। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु तो जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रहे, देखो तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम? हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? हाँ, इस बात का क्या जवाब होता, सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकते?

थी मैं। उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ये खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था तीसरा भाग। वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इस कहानी का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को हवा महल कार्यक्रम में।

0: अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

ऐसी फिल्म गगन आप सुन रहे थे मोहित चौहान, परंपरा टंडन और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। फिल्म है बाजीराव मस्तानी, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के स्वर हैं। गीत और संगीत सिद्धार्थ वर्मा के।

0: ये गीत था पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाज में सिद्धार्थ गर्मा के बोल। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको, तो
2: बहुत दिनों से देख रहा हूँ
1: तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और

0: साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और एचआईवी के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी केंद्र में जाकर एचआईवी से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी एचआईवी जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें सलीम के बोल हैं। फिल्म तुम्हारे हवाले वतन साथी।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोनगली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप

0: चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के

वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है, तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। हुन तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रोग्राम आपके लिए।
3: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
4: वो मुझे कुछ काम है।
3: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
4: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
3: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
4: क्या नहीं जानता?
3: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
4: सच में?
3: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
5: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

सामने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुनहरी धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रहस्य चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देख लो बताओ, मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के

0: अपने बल्लम कोई करता चमर होगा।
1: वाह की आवाजें बुलंद होगी। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

0: beta selfie lele re.
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी

कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी हैं और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनकी बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हुए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान, और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान

की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जिया में।

0: 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उली द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना तो।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से

कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांगले।
1: आज के फनकार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

0: जरा सी इनायत हो जाए तो कयामत के बादल बिजलियां गिराने को आतुर हो जाएंगे। जरा सा एक एहसास दिल को होने लगा है, वो मेरा है, मेरा होने लगा है।
1: नजरों से कह दो जो

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अंतराल के बाद चाय गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ अगर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

उल्फत में जरा सी शोकियां हैं, नादानियां हैं, कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, मगर जरा मेरे दिल की मजबूरियां देखिए, ये मोहब्बत भी उन्हीं से बार बार करता है।

सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से

सोची तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो

तुझ से मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: आज छायागीत का सफर बस यहीं तक, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का

0: चाचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मल क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
0: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। हुन पेश ने मुख्य प्रादेशिक खबरां। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने NEET UG प्रीख्या विच जीव विज्ञान पेपर लीक मामले विच मुख दोषी नूं गिरफ्तार कीता है। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात दे नतीजियां तों असंतुष्ट विद्यार्थियों नूं अपनियां उत्तर पुस्तकावां दी समीक्षा करन दा मौका देण दा फैसला कीता है। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकणगे। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 12वीं जमात विच 95% तों वध अंक प्राप्त करन वाले सरकारी स्कूलां दे होणहार विद्यार्थियों नूं सन्मानित कीता। हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर विच भाजपा 2 दिना सिखलाई प्रोग्राम दा उद्घाटन कीता। इस तों पहला श्री आदि बद्री नारायण मंदिर विच पूजा कीती। आकाशवाणी दी स्थापना दे 90 शानदार साल पूरे होने दे संबंध विच ऑल इंडिया रेडियो दे चंडीगढ़ केंद्र ने सुखना झील ते एक वॉकथॉन दा आयोजन कीता। समाजिक न्याय ते सशक्तिकरण मंत्री कृष्ण बेदी ने अज हांसी जिले दे सिसाई पिंड विच एक आधुनिक ड्रोन निर्माण यूनिट दा उद्घाटन कीता। अज शनिचरी मस्या ते हरियाणा ते देश दे होर राज्यां तों सैकड़े श्रद्धालुआं ने कुरुक्षेत्र दे पवित्र ब्रह्म सरोवर विच इशनान कीता अते लोड़वंदां नूं काले तिल, माद दाल, काले कपड़े, छतरियां, जूते अते चप्पल दान कीतियां। सिक्ख्या मंत्री महिपाल टांडा ने पलवल विच जाट समाज विकास समिति वल्लों आयोजित 2 रोज़ा चौपाई महाकुंभ विच कहा कि जाट समाज विकास समिति चौपाई अते ਟੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਸਾਂਝ।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में सुनिए सन 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई में अदम्य साहस, शौर्य और निडरता से बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मन की विशाल सेना का डटकर

0: मुकाबला करने वाले, उसे पीछे हटने पर मजबूर करने वाले महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कहानी उन्हीं की जबानी पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कल दिन में 11 बजे।
1: तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करके फौज के टैंक पाकिस्तान के रोंगेवाला की तरफ निकले, तो उसी वक्त जो हमारा पेट्रोल गया हुआ था बॉर्डर के ऊपर 30 बंदों का, उन्होंने मेरे को वायरलेस सेट पर बता दिया कि सर ये तो पाकिस्तान की तरफ से इतने टैंक और इतनी पैदा फौज आपकी तरफ आ रही है।
0: तो सुनना ना भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा कल दिन में 11 बजे।
2: हुन पेश है प्रोग्राम सरसान ते आज दा प्रोग्राम लेके हाजिर है तुहाडी रेडियो दोस्त रुपिंदर। शुरू कर दे आज दे इस प्रोग्राम नू गुरदास मान दे गाए इस गीत दे नाल।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम तुसी सुनोगे हर भजन मान दगाया यह गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रोग्राम सुरसांझ हुण तुसी सुनोगे हंस राज हंस दा गाया होया ए नगमा।

0: वे कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: आज दे प्रोग्राम सुरसांत दी आखरी पेशकश मनमोहन वारिस दगाया एक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में

0: कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਸੇਵਾ ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।